0: रखड़ीस के पाशा जी महाराज
1: कादरे हरकार गुरु गोबिंद सिंह बेक सारा यार गुरु गोबिंद सिंह हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी आप जी का रोम रोम शुक्राना सतगुरु जीओ अपने बच्चों पासो अपनी निकी बुद्ध बिठा के आपने आसा दीवार संपूर्ण कीर्तन करवाए शब्द कीर्तन कर दिया आसा दीवार कीर्तन कर दिया बेन पुकार दी भूल गलतियां हो गई हो सतगुरु जीओ अंजान बच्चे समझ माफ करना सतगुरु जीओ गुरमुख प्यार विच संगत बेअंत माया हद दे पातशाह जी आप खजाने भरपूर करने महाराज जी कारोबार के वादे बख्शने महाराज जी चढ़ती कला उच्चा सच्चा दिन बख्शने महाराज जी अपने चरणा ना प्रीति ना जुड़ी रखना हर दुमदान फतेह करने खुशियां करने यात्रा

सुन यार हमारे सज्जन एक करो बिनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हाओ फिराओ खोजंतिया तिस दस

चादर चक्र वर्ति चक्र चक्र भुक्ते स्वयं पौष भंग सदा सजिते दुपाल प्रणाशयाल स्वरूपे सदा अनुशया पंग विभुते ते कुफदन सुदा दत्त नारंग गुरु गोविंद सिंह जी श्री काल प्रति

तौ प्रसाद सवैये श्रावक सोद समूह सिधान के देख फिर घर जोग यति के सूर्य सुरार्दम सोध सुदादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे अमत को न देखियत प्राणपति के श्री भगवान की भाई कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माधे मतंग जरे जड़ संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कुदत कौन के गौन को जात निवारे पारी पुजान के पु

पवन आहार जति जार सबैसु विचार हजारक देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेख है शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सनाह दुर्जान दलेंगी भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हल्ले ना हल्लेंगे तोर अरीन मरोरम वासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पर श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार विचारे सार की धार बछैया तोर देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाढ़ी गड़ान को तोड़न हार सो बातन ही चकचार लबैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया दानव देव फनिन निसाचर भूत भविक भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसंग फिरा जाग सत्र सभा अवलोक जपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरादिव जांत्र लोक को राज करेंगे कोटि स्नान गजाधिक दान अनेक स्वंबर साज परेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत फसे जम फांस परेंगे जे नर श्रीपद के प्रस है पग ते नर फेर ना देह धरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो बग

साच कहौं सुन लेहु सब, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। काहुल पाहन पू धर्यो सिर, काहुल लिंग

अतुल प्रताप सब था पियो जह था अनखेद भेद अशेद मुखचार गावत भेद जह नेद निगम कहंत मुखचार बकत बेअंत अनभिज अतुल प्रताप अनखंड अमित अथाप जय कीन जगत पसार।

उदार जयकूट इंद्र नृपार की ब्रह्म विषन विचार के राम कृष्ण रसूल बिन पगत को ना कबूल के सिंध बिंद नगेंद्र के माच्छ काच्छ फनेंद्र के देव आदि कुमार के।

जले हरि थले हरि उरा हरि बने हरि गिरे हरि गुफे हरि शिते हरि नभे हरि इहा हरि उहा हरि जिमि हरि जमा हरि अलेख हरि अभेघ हरि अदोघ हरि अद्वैख हरि अकाल हरि अपाल हरि अशेद हरि अभेद हरि अजंत्र हरि अमंत्र हरि सुतेज हरि अतंत्र हरि अजात हरि अपात हरि अमित्र हरि अमात हरि अरोग हरि अशोक हरि अभर्म हरि अकर्म हरि अजय हरि अभय हरि अभेद हरि अशेद हरि अखंड हरि अभंड हरि अडंड हरि प्रचंड हरि अतेव हरि अपेव हरि अजेव हरि अक्षेव हरि पजु हरि थपु हरि तपु हरि जपु हरि जलस्तु हि थलस्तु हि नदिस्तु हि नदस्तु हि वृक्षस्तु हि पतस्तु हि छितस्तु हि ऊर्ध्वस्तु हि पजस्तु अंग रटस्तु अंग ठटस्तु अंग जिमी तु ही जमा तु ही मकी तु ही मका तु ही अभू तु ही अभय तु ही अशू तु ही अशा तु ही जतस्तु ही प्रतस्तु ही गतस्तु ही।

भूत बंजारी चित छौना सब दूध हजारी पान के आहारी सो भुजंग जानियत है। ऋण के बसैया धन लोभ के तजिया ते तो गौवन के जैया ब्रेक भैया मानियत है। नभ की उडैया ताय पंछी की बटैया दीत बगला बिड़ाल ब्रेक।

भूम के बसैया दाय भुजरी के जैया कह नब के उड़या सोच रैया कह बखानिया फल के बसैया दाय बांदरी के जैया कह आदि से प्रेया दे दो भूत का पशानिया जल के तरह को गंगे ऋषि कहत जाग आग के बसैया सोचा कोर साम मानिया सूरज सिवैया।

के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक से उभय एक गए एक फेर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा विष्णु के ते वेद और पुराण के ते सिमरत सबुहन कह होए होए बिताए है। मोन जी मदार के ते असुनी कुमार के ते अंशावतार के ते काल बस भय है। पीर और पिकाम्बर के ते गणना पर तुगियते ब्रह्मचारी बड़े बड़े शत्रधारी शत्र ही की छाया कई कोस लोचनत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीप और दिलीप कैसे शत्रधारी बड़ो अभिमान बुझ

ज्ञान के विहीन महादान में न हुआ लीन, भावना यकीन दीन का सिका दरत है। जैसे एक स्वांगी कहू जोगी या बैरागी बन, कबू संन्यास भेद बन के दिखा वही, कहू पौन हरी कहू बैठे लाए तारी, कहू लोभ की खुमारी ये था अनेक गुण गावई, कहू ब्रह्मचारी कहू हाथ पे लगावे बारी, कहू दंड धारी हो क्या लोगन भ्रमावई, कामना दीन परियो नाचे।

गद रान की परत कर पताल के बात क्यों भुजंग ना तरत है। को भय मुंडिया सन्यासी को जोगी पायो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान को हिंदू तुरक को राफ जी इमाम साफी मानस की जात सब का पहचान वो करता करीम सोई राज करहीम ओई दूसरो न वेद कोई भूल ब्रह्म मान वो एक ही की सेव सभी को गुरुदेव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान वो देहो राम।

जैसे एक धूर से अनेक धूर पूरत है, धूर के कण का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद से तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप से अभूत भूत प्रकट हुए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते कछ मछ केते उन को करत भछ, केते अच्छ बछ हुए तो पछ उड़ जाएंगे। केतना बीच अच्छ पछ को करेंगे भछ, के तक प्रत्यक्ष हुए पचाए।

न ब्रह्मं न जन्मं न जातं अद्वैखं अभेखं अजोनी स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परें परापरं प्रज्ञा प्रकाशी अशेदं अशह आद अद्वै विनाशी न जातं न पातं न रूपं न रंगे नमो आद अभंगे नमो आद अभंगे किते कृष्ण से कीट कूट उपाय उसारे गड़े फिर मेटे बनाए अगाधे अभयाद अद्वै विनाशी परे अंगवरा परम पूरण प्रकाशी न आदंग न व्याधंग अगाधंग स्वरूपे अखंडत प्रतापाद अच्छा विभूते न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेहंग सनेहंग सनाथे उडंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्रे सुभूते भविखे भवाने अचित्रे नारायण नरंकं न रूपं न लेखं न लोभं न चोभं अभूतं अभेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं सदैवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं अजूनि अशयाद अद्वै अजूहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न सोगं अभय निर्विखादं अशेदंग अभेदंग अकर्मंग अकालंग अखंडंग अभंडंग प्रचंडंग अपालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न परमंग न पाहयंग न रूपंग न उपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न पेहदंग न परमंग सदैवंग सदा सिद्ध बिरधंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे निरुक्तंग प्रभाद अनुक्तंग प्रतापे अयुक्तंग अशयाद अव्यक्ते अथापे विभुक्तंग अशयाद अच्छा स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहंग न गेहंग न सुखंग न साकंग परेयंग पवित्रंग।

ना सतरंगना मित्रंगना पुत्रंग सरूपे नमो आद रूपे नमो आद रूपे कहु कंज के मंज के परम भूले कहु रंग के राज के धर्म अलूले कहु देश के भेद के धर्म धामे कहु राज के साज के बाजता में कहु अक्षर के पक्षर के सिद्ध सादे कहु सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लादे कहु अंग के रंग के संग देखे कहु जंग के रंग पेखे कहु धर्म के कर्म के हरम जाने कहु धर्म के कर्म के परम माने कहु चार चेष्टा कहु चित्र रूपं कहु परम प्रज्ञा कहु सर्वभूपं कहु नेह गृहं कहु देह दुखं कहु औषधि रोग के सुख सुखं कहु देव विद्या कहु दैत वाणी कहु जश गंधर्व किन्नर कहानी कहु राजसी सातकी तामसी हो कहु योग विद्या धरे तापसी हो कहु रोग रहता कहु जोग जुगतं कहु भूमि की भुगत मैं भरम भुगतं कहु देव कन्या कहु दानवी हो कहु जश विद्या धरे मानवी हो कहु राजसी हो कहु राज कन्या कहु सृष्टि की पृष्ठ।

कहु मद्रवाणी कहु शूद्र स्वरूपं कहु वेद विद्या कहु काव्य रूपं कहु चेष्टाचार चित्रंग स्वरूपं कहु परम पुराण को पार पावे कहु बैठ कुरान के गीत गावे कहु शुद्ध से कं कहु ब्रह्म धर्म कहु वृद्ध अवस्था कहु बाल कर्मं कहु ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहु नेह देहं कहु त्याग गृहं कहु योग भोगं कहु रोग रागं कहु रोग हर्ता कहु भोग त्यागं कहु राज साजं कहु राज रीतं कहु पूरण प्रज्ञा।

कहू राज विद्या कहू राजधानी कहू मंत्र विद्या कहू तंत्र सारंग कहू यंत्र रेतंग कहू शस्त्रता हरंग कहू होम पूजा कहू देव अर्चा कहू पिंगुला चारणी गीत चर्चा कहू बीन विद्या कहू गान गीतंग कहू मरिज भाग्या कहू वेद रीतंग कहू नृत्य विद्या कहू नागबानी कहू गारुड़ू गूढ़ कथा कहानी कहू अक्षरा।

त्रस्तं नाग्रस्तं समस्तं सरूपे नमस्तं नमस्तं तुअस्तं अभूते तौ प्रसाद पादरी शांद अव्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अच्छा स्वरूप अद्वै अनाथ अंतुट तेज अनखुट भंडार दाता दुरं सर्वं प्रकार अनभूत तेज अंशेज गात करता सदीव हरता सनात आसन अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धरम जय सत्र मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गे नहीं व्योत बान जय जात पात नहीं सत्र मित्र जय नेह गे नहीं चहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेग जय जन्म जात नहीं परम पेघ जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय जाम ठाम नहीं बरग प्याज जय रोग सु

जोग जुगत जत्रास आस नहीं पूर्म पुघत जय क्याल वाल कटियो न अंग अक्षय स्वरूप अखय अभंग जय नेत नेत उचरांत वेद जय अलक रूप कथत कतेब जय अलक रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय अतुल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कलव जोग साधत दुरंत तनसीर घाम बरखा संत कई कलव एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधु।

कई अग्नि होत्र कई पवन आहार कई करत कूट मृत को आहार कई करत ताग पै पथिर बच्छ नहीं तदब देव बहुवत प्रत्यक्ष त्या प्रतीत को बेदी जग्याद करम को अग्नि होत्र को तीरत।

कई तीरथ तीरथ भरम सु भरम कई अगन होत्र कई देव करम कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदपता स्पायत ना पार कऊ राज रीत कऊ जोग धर्म कई सिमरत शास्त्र उचरत सु करम निवली आदि करम कऊ हस्तदान कऊ अश्वमेध मक्कु बखान कऊ करत ब्रह्म विद्या विचार कऊ जोग रीत कऊ बिरध चार कऊ करत दक्ष गंधर्व गान कऊ धूप दीप कऊ अर्घ दान कऊ पितृ करम कऊ वेद रीत कऊ नृत्य नाच कऊ गान गीत कऊ करत शास्त्र सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कही गेह वास कई भ्रमत देह देशन उदास कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्ध लटकांत जाप कई जप जो कल्पन प्रजांत नहीं तदपता स्वायत न अंत कई करत कूट विद्या विचार नहीं तदप दिष्ट देखे मुरार बिन भगत सकत ने परत पान वो करत हो।

जय जंपो युगण जूह जुअंगो मेर पयाल पुहंग तप्ताप सरव जलेर थलंग धनुचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद स्वरूप अभेद अभ्यंग अनखंड अभूत अशात अछेद अशियंग अनकाल अपाल दयाल असुअंग जे ठट्यंग मेर अकाल भुअंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जे रच्यंग देव अदेव नर बरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जे रच्यंग सरब मकीन मका जे राग न रूप न रेख रुखंग जे ताप न साप न सोख सुखंग जे रोग न सोग न भोग पुयंग जे खेद न भेद न शेद शयंग जय जात न पात न मात पतंग जे रच्यंग क्षत्रि छत्र छितंग जय राग न रेख न रोग भणंग जे द्वैग न दाग न दुख गणंग जे अंड ते ब्रह्मांड रचियो दश्चार करी न उखंड सचियो रजता मस तेज अतेज कियो अनुभव पद आद प्रचंड लियो श्री सिंधुर बिंद न गिंद न गंग श्री जक्ष गंधर्व फणिंद भुजंग रच देव अदेव अभेव नरंग नरपाल नरपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंड जितज उत भुजंग किए देव अदेव सराज पतंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रवजात न पात न ज्योत जुतंग जय तात न मात न प्रहत सुतंग जय रोग न सोग न भोग पुअंग जय जंप है किन्नर जच जुअंग नर नान पुंसक जाए किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गज बाज रता दिग पांत गणंग बहुभूत भवेख भवान तुअंग जे अंड जसे तज देर रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रज पावक पौन

चंड बली बंजास कियो फल फूल करी भू मेर आकाश निवास चितंगरच रोज एकादश चंद्र व्रतंग दूत चांद दिनी सदीप दई जय पावक पौन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाय दिए जय लोक चतुर्दश चार रचे नर गंधर्व देव अदेव सचे अनधूत अभूत अशूत मतंग अनगाद अभ्याद अनाद गतंग अनखेद अभेद अशेद नरंग जय चार चतुर्दिश चक्र किरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जय सूग न भोग न जोग जुगंग भुव भंजन गंजन आदि रंग जय बंद देव अदेव नरंग गण किन्नर जक्ष भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अनभंज प्रभान गंज प्रतंग जय पारण पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप अदंड प्रभा जय जमपद वेद पुराण सभा जय वेद कतेव अनंत कह जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जप सुत सिंध अधो मुख ताप तप कई कल्पन ला तब ताप करे नहीं नय कृपा नित पान पर जय फूकर धर्म सब तज है एक चित्त कृपा निध को जप है तिव्या बहु सागर को तर है बहु भूलना देह पुनर्धर है एक नाम बिना ने कूट वृत्ति इम वेद।

भंज भंज जानिया भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दास देव सर्व साथ है अनाथ नाथ नाथ है भंज भंज है सदा अगंज गंज गंज है सदैव सिद्ध वृद्ध दा अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिया सदैव सिद्ध शुद्ध दा प्रताप पत्र जानिया नराग रंग रूप है नरोग राग रेख है अधोक अधक अधक है भूत अभरमा भेक है न तात मात जात है न पाच है न वर्ण है अधिक असेक अभेक है सदैव विश्व भरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेष विश्व भरण है जिमी जमान के बिख्या सदैव करम भरम है अद्वैक है भेक है अलेख नाथ जानिया सदैव सर्व ठौर में विशेष आन मानिया न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण अपुराण नेत नेत कह बतावई न कर्म में न धर्म में न भ्रम में बताइए अगंज आदेव है कहो सुकैस पाइय जिमी जमान के बिखे समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है न हान है न बान है समान रूप जानिए मकीन ओ मकान अप्रमान तेज मानिए न देह है न गे है न जात है न पाद है न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है न अंग है न रंग है न संग है न साथ है न दुख है न दाग है न द्वैक है न देह है न सिंह है न सियार है न राव है न रंक है न मान है न मौत है न सा

है ना देह को बनाओ है ना शल है ना छिद्र है ना शल को मिलाओ है ना जंत्र है ना मंत्र है ना तंत्र को स्वरूप है ना राग है ना रंग है ना रेख है ना रूप है ना जंत्र है ना मंत्र है ना तंत्र को बनाओ है ना शल है ना छिद्र है ना।

गंज है, भंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रूग है, न सूग है, न भेद है, न पंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साथ है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमाथ है, न सीत है, न सूच है, न घ्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न शल है, न छिद्र है, न छिद्र की विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैग है, न भेक है, न द्वी है, न द्रुह है, न काल है, न बाल है, सदीव दयाल रूप है, गंज है, भंज है, भरम है, भूत है, अशेद शेद है, सदा गंज गंज गंज है, अभूत अभेक है, बली अरूप।

न शल है, न छिद्र है, न छिद्र को स्वरूप है, अभंग है, अनंग है, अगंज सी विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ मोहकार है, न आद है, न गाद है, न व्याध को विचार है, न रंग राग रूप है, न रूप

सितस्पति तपस्पति वनस्पति जपसदा अगस्त आजे बड़े तपस्पति विशेखिया बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखिया अगाध आ देव की अनाद बात मानिए नजाद पात मंत्र मित्र सत्र सने।

हस्त कीट विखै बसे सब ठौर में निर्धार। जात पात मता जागो मंत्र मात्मा मित्र सर्व ठौर विखै रमियो जे चक्र चेहना चित्र। आदि उदार मूरत अगाध नाथ अनंत, आद अंत न जानिए अभिखा देव दुरंत। देव भेव न जाने जे मरम वेद कतेव, सनक औसन केश नंदन पावही न सेव। जच्छ किन्नर मच्छ मानस उरग उरग अपार, नेत नेत पुकार ही शिव सक्र अमुखचार। सर्व सपत पतार के तर जाप ही जह जाप, आदेव अगाध तेज अनाद मूरत अताप। जंत्र मंत्र न आवी कर तंत्र मंत्र न कीन, सर्व ठौर रहो विराज है सर्व ठौर रहो विराज, धीराज राज प्रवीण। जक्ष गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय माहे, वैष्णव के विखै विराज शूद्र भी वह नाये। गूढ़ गौर न पिहिल भी कर ब्रह्म शेख स्वरूप, राज दिवस न मध उरध न भूम आकाश अनूप। जा जन्म न काय करम न धर्म करम विहीन, तीरथ जात न देव पूजा गुर के नाधीन। सर्व सपत पतार के तर जानिया जह जूत, शेष नाम सहंसपन नहनेत पूरन होत। सोध सोध हटे सब सुर विरोध दानव सरब, गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गर्व। पड़त थके महाकब गड़द गाड़ अनंत, हार हार कहियो सबु मिल नाम नाम दुरंत। वेद भेद न पायो लख्य न सेव कतेव, देव दानो मूड मानो जच न जाना जीव। भूत भव भवान भूपत आदनाथ अनाथ, अगन बाय जले थले मैं सर्व ठौर निवास। देह गे न नेह स्नेह अभेह नाथ अजीत, सर्व गंजन सर्व भंजन सर्व ते अनभीत। सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व दयाल अद्वेख, चक्र जहना बरंजा को जात पात न भेख। रूप रेख न रंग जाको राग रूप न रंग, सर्व लायक सर्व घायक।

परंजहन न चक्र जा को चक्र चहन आकार जात पात न गोत्र गाथा रूप रेख न भरण सर्वदाता सर्व ज्ञाता सर्व भूव को भरण दुष्ट कंजन शत्रु भंजन परम पुरख प्रमाथ दुष्ट हरता श्रेष्ठ करता।

देव देव गंधर्व किन्नर माछि काश अपार भूम आकाश जले तले मेहमानिया जह नाम दुष्ट हरता पुष्टिकर्ता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोविंद मैत्र पालक सत्रघालक दीन दयाल मुकंद अघाव दंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल दुष्ट हरणं पुष्ट करणं सर्व के प्रतिपाल सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज पहाम सर्व भुगता सर्व जुगता सर्व करम प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व करम अधीन सर्व सिमृतिं सर्व शास्त्रं सर्व वेद विचार दुष्ट हर्ता विश्व भर्ता रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देव अखंड भूम आकाश जले थले महे जप जा।

करे कई देन कूट इंद्र उप इंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव ना पावई से रुद्र ओम विचार कूट इंद्र उपेंद्र व्यास नख

दुर्जन दल दंडन असुर विहंडन दुष्ट निकंडन आदृति चछरासुर मारण पतित उदाहरण नरक निवारण गूढ़ गति अशे अखंडी तेज प्रचंडी खंड उदंडी अलखमती जय जय हो सीमा खासुर मर्दन राम कपर्दन शत्रशिते आसुरी विहंडन दुष्ट निकंडन पुष्ट उदंडन रूपाते चंडासुर चंडन मुंड विहंडन धूम्रवधन सन महकमते दानव प्रहार नर

भूखण दम कह अति स्थित जम कह फंक फनंग जय जय हो सी मह खासुर मर्दन राम कबरदन जात जिनंग चंडासुर चंडन मुंड बिमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंकन धुजा फरंकन फणी फुंकारन जोध जिते सरदार विभरखण दुष्ट प्रकरखण पुष्ट प्रहारखण दुष्ट मथे जय जय हो सी मह खासुर मर्दन भूम आकाश तल ऊर्ध अधे दामनी प्रहासन सुछव निवासन सृष्ट प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आचन जोध प्रमाचन निर्दय नराचन धर्म वृते श्रोणांत अचिंती अनल विवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अग ओग निवारण दुष्ट प्रजारण सृष्ट उबारण शोध मते फणियर फुंकारण बाघ बकारण।

प्रदंते जोग जयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज प्रतिजन आश भरम विनाशन धर्म दुजे घुंगरू घमंकण शस्त्र झमंकण फणियर फुंकारण धर्म दुजे अष्टाद प्रहासन सृष्टि निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाह शुद्ध सनाहे अगम थाहे एक वृते जय जय हो सि मैं खासुर मर्दन आज कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंद दुष्ट निकंदन दृष्टि पिनाथन मृत मथे कावरु कुमारे अधम उदारे नरक निवारे आद कथे केंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंघारोहन पितल तले जय जय हो सी सब ठौर निवासन बाए पताल आकाश अनले संकट निवारण अधम उदाहरण तेज प्रकरखण तोंद तबे दुग दुग दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाध अछे शुद्धता समर्पण तरक बितरकण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय हुसी शास्त्र प्रकरखण आद अनिल अगाध अभे चंचला जखंगी अलग भुजंगी तोंद तुरंगण तेच्छ सरे करकसा कुटारे नरक निवारे अधम उदारे तूर भुजे दामनी दमंके केहर नंके आद अतंके क्रूर कथे जय जय होती रक्तासुर खंडन सुंभ चक्रत ने सुंभ मथे बारद बिलोचन ब्रतन विमोचन सोच विसोचन कौश वसे दामने प्रहासे सुख थरनासे सुभृत सुभासे सुदुष्ट ग्रसे चंचला प्रयंगी भेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय हो सि मैखासुर मर्दन आद अनाद अगाध ऊर्धं घंट का विराजा रुण युण बाजा भ्रम भय भाजा सुना सुरंग कोकल सुन लाजा कैलभिग भाजा सुकोप राजा माधुरंग दुर्दंदल लज्ज है मंतन रिज्ज है सबैना भज्जा रोहरणं जय जय हो सि मैखासुर मर्दन चंड चक्र तन आद गुरंग चाचरी प्रजोदन दुष्टि विरोधन रोष आरोधन क्रूर वृते धूमराज विधुंसन प्रलय प्रजुंसन जाग विधुंसन शोध मते जाल पयंती सत्र मधंते दुष्ट प्रदाहन गाढ़ गते जय जय हो सि मैखासुर मर्दन आद जुगाद अगाध गते खत्रियाण खतंगी अभय भंगी आद अनंगी अगाध गते प्रलाज विहंडन चक्षुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृते सुर नर प्रतिपारण पतित उदाहरण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय हो सि मैखासुर मर्दन विश्व विध्वंसन श्रेष्ठ करे दामनी प्रकाशे उन्तन नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानी प्रकरखण सर्वर वरखण दुष्ट प्रदर्खण वितल तले अष्टायद बाहन भूल निवान संत पनाहन गूढ़ गते जय जय हो सि मैखासुर मर्दन आद अनाद अगाध वृते दुख दुख प्रभक्षण सेवक रक्षण तांत प्रतक्षण शोध तरे सारंग सनाहे दुष्ट प्रदाहे अर्दल गाहे दुख हरे गंजन गुमाने अतुल प्रवाने संत जमा ने आद अंते जय जय हो सि मैखासुर मर्दन साद प्रदक्षण दुष्ट हंते कारण करी ली गर्भ गहिली जो जतिले तोंद मथे अष्टाद चमकण शस्त्र झमकण दामिन दमकण आद वृते डुग डुगी दमंगा बाग बबंगा पुझा परंगा शुद्ध गते जय जय हो सि मैखासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चचरासुर मारण नरक निवारण पतित उदाहरण एक भटे पापान विहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अक

चंड चक्र दानव अर्जुन बिड़ाल बधे सरदार विवर खन दुर्जन धर खन अतुल अमर खन धर्म बुझे धूमराज सुन चुनसन सोम्भ न पात सोम्भ मधे जय जय होसी।

करीम का आदर कृपा अद्वया भूतान भय दयाल दाता दुरंदुग दोग राज्य नेत नेत भेद कहत कई उच्च नीच की नो बनाओ सब बार बार जागो प्रभाव सब जीव जानत जानंत जाय मन मूड क्यों ना सेवंत ताहे कई मूड पद्र पूजा करंत कई सिद्ध सा सूरज सेवंत कई पलट सूरज सिद्धा कराए प्रभ एक रूप द्वै कै लखाए अनछिज तेज अनभय प्रकाश दाता दुरंत अद्वया ना सब रोग सुख दे रहत रूप अनभय

जैसा तर मित्र दू एक साल अच्छा स्वरूप अब चल अपार जारी न जाय रूप रेख जगह बास तास कह कौन फेख कह नाम तास है कवन जा जैसा तर मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चह नहीं रंग रूप जय खेल वेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की गरत पाल उर्धंग बिरह सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग अपाल जुद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंश जितेज अनभिज अदाग जल जल मही बंतन दुरंग जय नेत नेत निर्दन श्रांत पायो न जाय जय पैर पार दीना दुख दहता उदार कई कोट इंद्र जय पार हार कई कोट

पार न पाए सकया पद्मावत वीर गदेव अभेद उचारा रोजी राज बलोगत राजिक रोग रोहान की रोजी ना टारा कीट पतंग रंग पुजंगम भूत भविक भगवान बनाए देव अदेव खपे अहन मेवना भेव लखे ब्रह्म शिव भरमाए वेद पुराण कतेव कुरान हसेब थके कर हाथ न आए पूरन प्रेम प्रभाव बिना पद शिव किन श्री पद्मा पद पाए आद अनंत अगाध अद्वैक्सु भूत भविक भगवान अभय अंत भीन अनातम आप अदाग अधोग अशिद्र अशह लोगन के करता हरता जल में थल में भरता प्रभु वह दीन दयाल दया कर श्रीपत सुंदर श्री पद्मापति है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न सोग न भोग न भय देह भीन स्नेह सबोतन नेह विरक्त अगेह अशह जान को देत अजान को देत जमीन को देत जवान को दह काहे को डोलत

है अपने कर देकर पाप शंभू न भेटन पावे। और की बात कहा कह तू सो पेट ही के पड़ बीज बचावे। जाचु भुजंग सुदानो देव अभेव तुम सब ही करते आव। भूम आकाश पताल रसातल जाचु भुजंग सब सिरने आव। पाय सके नहीं पार प्रभाहु को नेत ही नेत वेद बतावे। खोज थके सभी खुजिया सुरहार परे हर हाथ न आव। नार से चतुरान से रूम नारिक से सब हु मिल गायो। वेद कते अपना वेद लगे सब हार परे हर हाथ न आयो। पाय सके नहीं पार उमा पर सिद्ध सनातन तंत्र आयो। ध्यान धरो त्य गो मन में जय गो तो जगशायु। वेद पुराण कते पुराण अभेन्द्र पान सब पजारे। वेद न पाए सके अन भेद को खेद अनचेज पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साग न सोग न संग तिहारे। आद अनाद अगाध अभेख अद्वैग जप्यो तिन्हें कुल तारी। तीरथ गोड किए स्नान दिए वो दान महाव्रत धारे। देश कर भेष पोधन केश धरे न

के चलया क्षेत्र छत्र के धरैया छत्र धारियों के छलैया माँ सत्रण के साल है दान के दिवैया माँ मान के बढ़ैया उसान के दिवैया है कटैया जम जाल है युद्ध के जितैया और विरुद्ध के मिटैया माँ बुद्ध के दिवैया।

पूर्वी न पार पवे हिंगुला हिमल ध्याव गुर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है। जोग जोग साधा पौन साधना की तेग बाध है अरब के आर भी आराधा तेरे नाम है। परा के फिरंगी मान कंधारी कुली सी जान पच्छम के पच्छमी पच्छरे निज काम है। मरहटा वगैरह तेरी मन सो तपस्या कर जड़वे तिलंगी पहचान धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आगे मैं चलत है। रूह के रोहिले माघ देश के मघेले बीर बंग सी बुंदेले पापुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चीन मचीन के तीस ने वह तिब्बती तिहाय दोग देह के दलत है। जिना तो इतिहायु दिन पूरण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और कहू पे नीन साधा धीन कहियत है। पाई है न पार तेज पुंज में अपार।

हिंगुलाही मा लगावे है बसी हल भी ध्यावे है पूर्वी न पार पावे असत अनास है देवन को देव महादेव के देव है निरंजन अभेवनाथ अद्वै विनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटिया जम जाल के देवन के देव महादेव के देवनाथ भूम के बुधिया है मुहिया महाबाल के राजन के राजा महासाजू के साजा महाजोग को जोग है धरया ध्रुमशाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथिया है के कार है कुचाल के शीर कहती शिरावद छाछ कहती छतरा नेर छपा कर कहती शव कालिंद्र के कुल के हंस निशि सिहारू मीरासी हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारासी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोराती सुरंगाबाद निक रही झूल के चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदा गढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमऊ गढ़ कांसी पोर सीसा सी सुरंगाबाद नी कैसो हियत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हलब्बा नीर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रा घेर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जो हियत है गंगा सम गंगधार बकांसी बिरंदाबाद कीरत तिहारी की उजारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी के दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाइयत है बखरी कंधारी गोर गखरी गर्दिया चारी पौन के आहारी तेरो नाम दिहाइयत है पूरव पलव काम रूप कमऊ सर्व ठौर में बिराज जहां जहां जाइयत है पूरन प्रताप।

शोभा वसंत जह तह प्रडुल बन तंदुरंत खग मृग महान जह तह प्रफुल्ल सुंदर सुजान फुल तंग प्रफुल्ल लह लहत मूर थिर ढुरह जान।

गुर बर अकाल देग तेग फतेह गुरपंत खालसे दीज नौ दिन चढ़ दी कला रखनी सचे पाशाह।

चरण शरण पूरे शरण ए पंडा जाए ए पंडा जाए सतगुरु को पंडा आगे आगे सतगुरु को पंडा आगे

अति सन्मान योग संगत जी कवि कहिंदा वध्या घोड़ा छेड़के गाजी अणमुला उन्हें वैरी पिछे तक के पिट कर लिया खुला उदे सिर ते चीरा अथरा फौलादी जुला जिवे मीह तो पहला आवदा हनेरी बुला छवें पातशाह जी महाराज दे ऐन बिलकुल सामने खड़ा हंकार दे रथ उत्ते सवार लला बेग उन्हें वंगार मारी महाराज जी नूं छवें पातशाह जी महाराज कहणगे गाजिया याद रख ओ पहली जंग विच असी कुछ नियम लागू कीते सी कुछ नियम तेरे तो पहला खान अब्दुल्ला आया वह तो पहला मुखलस खान आया सी उन्हें भी सानू एह वंगार मारी सी कि पहल तुसी करो छवें पातशाह जी के बोल सन मुखलस खान महाराज ने कहा मुखलस खान अज साडे जीवन काल की पहली जंग होने जा रही है अज असी सिखां दे वास्ते कुछ नियम लागू करने हैं कुछ नियम आने वाली जंगा दे विच आने वाले युद्धां विच साडे सिख इन्हां नियमां की उलंघना नहीं करनगे पहल तेनू दित्ती लै महाराज ने वह वाक दोबारा दोहराए छवें पातशाह जी महाराज कहने लला बेग आ एक छड दो छड तू तीन वार कर उन्हें तिने वार दिते ते वार खाली चले गए फिर शहनशाह महाराज आप मुस्कुराए महाराज कहन लगे पठाना वार ई ना जदद वार ई जदद भाव वार एदा नहीं वार तेनू असी दस दें किंज करना वा उस्ताद बन के छवें पातशाह जी महाराज आप दसन जा रहे फिर छवें पातशाह जी महाराज ने अपनी मीरी की चंडी बेमियान की एन हवाद लहराई मान लो इंज प्रतीत होया जिवें आसमान दे विच बिजली गड़करी होवे बिजली गड़की छवें पातशाह जी महाराज महाराज जी का यह वाला रूप उन्हें वेख्या लला बेग ने कंधा हाथ लगा लिया कह लगा या खुदा एक बार अज बचाला फिर कभी सिखां दे गुरु ते हमला करने वास्ते नहीं आवांगा मन च डर पैदा होया फिर छवें पातशाह जी महाराज ने तमाले के उपरों की श्री साहब लहरा के मार के निहंग सिंह वाला पैदरा घोड़े नूं अड्डी लगा के आन लैण के मोढ़िया तो एक सिंड के वार किया ते वार वजा लला बेग दे मोढ़े उत्ते सतसंग जी वार एडे बल होया वार दे उत्ते इन्ना जोर लगा सी छवें पातशाह जी महाराज जी का इतिहास का हवाला वा लला बेग ने अपने सानजोग संगत जी छाती दे उत्ते तवियां बीड़ियां सी तवियां लोहे दे कोट पाए सी उन्हें ते छवें पातशाह जी महाराज उन्होंने वार एडे जोर ना किया तीन इंच मोटा लोहे का कोट चीर के छवें पातशाह जी महाराज उन्होंने तेग खुबदी खुबदी जाती जाती सतसंग जी लला बेग की ऐन वखी तक खुबकी वखी तक मोढ़ों वार वजा ते वखी तक वार खुबिया शस्त्र विद्या विच इहनूं कहिंदे जी जनेऊ वार जदों छवें पातशाह जी महाराज ने यह वार किया बाढ़ चढ़ के तेग बार नूं खिंची महाराज जी ने साध संगत जी ओहदियां अद्धियां नाड़ां बाहर आ गईआं अद्धियां नाड़ां ओहदियां अंदरां बाहर आईआं ओहदे गुरदे दो फाड़ होए मान लो भी जिवें उहने अपने गल दे विच जंजू पाया होवे जंजू लला बेग मारिया गया फिर सतसंग जी छिवें पातशाह जी महाराज उन्हां कोलों बदला लैण वास्ते लला बेग दा भांडा काबली बेग आप अगे वधिया महाराज ने बहुत समझाया बच्चा तू अजे पुत्र वांग वापस चलै जा वो तेरे मामे मारे गए तेरा तेरे भरा मारे गए मारिया तू ही जावेगा ना अड़िया वो कहन लगा मेरे सामने मेरे बाप का कातल होवे मेरे मामियां का कातल होवे मैं किवें पिछे रवांगा उन्हें वंगार मारी छिवें पातशाह जी महाराज ने लिया के एक बार सिण के होर किया भांजा भी मारिया गया सारे जरनैल मारे गए इस तरह छिवें पातशाह जी महाराज ने माणयोग संगत जी अपने जीवन काल की तीसरी जंग जीती माणयोग संगत जी छिवें पातशाह जी महाराज उन्होंने अपने जीवन काल के चार जंगा वड्डियां लड़ियां चार जंगा वड्डियां ते दो छोटियां झड़पां जिन्हों आप कहने उन्होंने विचों यह तीसरी जंग सी दास बेनती करे जदों जंग की समाप्ति हो चुकी सी फिर छिवें पातशाह जी महाराज ने अपने सिखां नूं आप सरपाओ दिते करदिआं करदिआं वारी आ गई बाबा जी आओ सतसंग जी एक कविता लगाउण दा हुक्म हो रहा वा मेरे समय चो केवल 10 मिनट बाकी रह गया मैं आखिरी बेनती करके गुरु पंथ खालसे दी प्रताए एक आखिरी कविता लवा देनी है जी छेवें पातशाह जी महाराज अपने सिखां नूं सरपाओ बख्श रहे ने सतसंग जी करदिआं करदिआं वारी आ गई सूरबीर बहादुर बाबा बिधी चंद साहिब जी दी जिस तरह दास ने पहला बेनती की सी सतसंग जी बाबा जी वह महान आत्मा होया जिन्हों अपने गुरु का सीना होने का मान प्राप्त होया गुरु का सीना बनता जेरे सिख नूं छेवें पातशाह जी महाराज ने अपना दिल ही बना लिया हो पिछे की रह गया महाराज कह लगे बिधी चंद छीना गुरु का सीना पाओ भगत लीना कमी कदे ना हे छेवें पातशाह जी कहणगे बाबा जी तुहाडे तार घर विच कदे भी किसे गल दी तोड़ नहीं आवेगी कदे भी कमी नहीं आवेगी फिर इत्थे बस नहीं महाराज कह लगे सदा सांझ त्री पुश्तैनी निबहै गुर कर संग सुखैनी छेवें पातशाह जी कहणगे बाबा जी जिदा तुहाडी ते साडी सांझ निभी जाणा आउण वाले समें विच कोई भी गद्दी का वारस होवेगा तुहाडियां पुरखियां दी तुहाडियां पुश्तां दी सांझ बाबे नानक दे करदा इसे तरह निभदी जाएगी
फिर महाराज कहे तोर मोर मैं भेदना कोई गुरसिख नाम रहो आप दोई। छवे पातशाह जी कहे बाबा जी अज तो बाद कोई फर्क नहीं रह गया, याद रखियो जे कोई बाबे नानक का सिख तुहाडे अते साडे विचकार फर्क समझेगा उन्हू गुरु नानक दे घर की सिक्खी की प्राप्ति नहीं होगी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। एडे वे बचन महाराज जी ने किए साधसंग जी उसे सांझ नूं निभाउंदे आ रहे ने। अज वाले समय विच संपरदाय दल बाबा बिधि चंद साहिब जी दे 12वें जनशन महापुरख अति सन्मान योग सिंह साहिब जथेदार श्रीमान संत बाबा अवतार सिंह साहिब जी सुर सिंह वाले दास बेनती करे महापुरखां दा इस पावन धरती दे नाल सारियां हजूरी फौज दे नाल बेअंत प्रेम है। महापुरख आप तन करके भावें विदेश की धरती उत्ते गए हुए हैं पर महापुरख मन करके अपने विच ही विजर रहे हैं। महापुरखां दी हाजिर भी नाले लवा लैनी। आओ एक बार आखो जी नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। आओ सतसंग जी आखिरी कविता कहन जा रहे हैं फिर आप फतेह बुला देनी है जी। गुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज बाजा वाले प्रीतम प्यारे धन धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी महाराज जिन्हां दे वर्गा पैगंबर ना कदे होया ते ना कदे गांह जाके होवेगा। मैं एक बेनती करा जो स्पिरिट जो गुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज ने अपने खालसे नूं बख्शिया होर कोई पैगंबर नहीं दे सकिया। मैं बेनती करा शिवजी महाराज के बेंत उपाशक ने सात संगत जी दुनिया के बेंत सारे उपाशक होए ने दुनिया के बेंत सारे औली अवतार होए ने पर उन्हां अवतारां दे उन्हां दे चेले आपदे अवतारां वर्गे नहीं हुंदे। मैं बेनती करा जे हिंदू सनातन मत दे कोई भी सिख प्यारे ने ना उन्हां दे पुजारी ने सात संगत जी अपने पैगंबरां वर्गे नहीं हो। दसवें पातशाह जी महाराज ने एडी कृपा की महाराज आप दुमाला बनते सन सिखा ने भी दुमाला देता कि साढ़े सिख एक नहीं दो दो दुमाले बनया करे। महाराज आप नीलांबरी बाना पाते सिखा भी नीलांबरी बना देता। छवें पातशाह जी महाराज आप शस्त्रधारी सन तनको धारी सन चढ़ाधारी सन हू बहू अपना रूप खालसे नूं दे दिता। महाराज कह लगे खालसा मेरो रूप है खास खालसे मैं हां करू निवास। जो खून गुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज जी ने अपने सिखां विच भरिया साध संगत जी ओ खून नूं मिटाउण वास्ते लख जरवाणे आए लख आउंदे रहणगे सारे दे सारे मिट्टी विच रुल के मर जाणगे पर ए पंथ जुगो जुग अटल सी ते जुगो जुग अटल रहेगा। आओ तको गुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज उन्हां दे पंथ प्रथा एक कविता कहण जा रहे हैं जी। कलगीधर सतगुर दा वगदा खून रगां विच साडे।

0: आओ एक बार सब संगत गुरु ग्रंथ गुरु पंथ का ध्यान करो ते आखो जी सतनाम श्री
1: वाहेगुरु साहिब जी।
0: इत्थे समय दी समाप्ति है जी। आप सब संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने एडा वाण सम्मान बख्शिया। कोटान कोट शुकराना है साहिबे कमाल धन गुरु ग्रंथ साहब जी पातशाह जी महाराज साहब जी का जिन्होंने कुछ बोलन दा बल उद्यम बख्शिया है। कोटान कोट धन्यवाद सिंह साहब जथेदार अति सत्कार जग बाबा जी बाबा कुलवंत सिंह साहब जी तिना दे वलों बहुत सारे माण हाजिर होए ने तिना दा बहुत बहुत धन्यवाद। जिनी भी हजूरी फौज सजी हुई है सभना दा बहुत बहुत धन्यवाद। साडे प्यारे वीर भाई लखन सिंह जी पहुंचे ने ज्यों दे आए हैं सब सिंह बहुत सारे माण सम्मान बख्श रहे ने। पठानकोट धन्यवाद साहिब कुमार गुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज साहब जी का इतनी हाजिरी प्रमाण करियो जी। ये ढाडी जथा संपरदाय दल बाबा बिधी चंद साहब जी का हजूरी ढाडी जथा है जी। महापुरखों की हाजिरी भी नाल ही प्रवान कर लैनी जी। कलगीधर दे पुत्रो धीओ अमृत धारी होके जियो अमृत छको सिंह सजो ब्लॉक फतेह ते आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।